ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है वो काफी अच्छा सिंपल अगर रहता है तो बहुत अच्छा हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, देन सारी चीजों के लिए। तो रैली का जो ये वेस्टर्न बीआरटी बन रहा है ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है एंड रैली ड्राइविंग के लिए बहुत बेहतरीन शहर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक रैली को पूरे अमेरिका में गाड़ी चलाने के लिए छठा सबसे अच्छा शहर माना गया है। कम ट्रैफिक जाम और सारी चीज़ें ठीक ठाक रैली में ही चलती है। तो एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थालिया तो बनती है रैली के लिए और अमेरिका का नया नंबर एक का शहर भी रैली को घोषित किया गया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा नाइट्स, बने रहिएगा क्योंकि सुनाने जा रहा हूं आपको अगला ये बहुत ही सुहाना गाना जो कि पेश होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

अपन ने मतलब नाइट्स एंड एंजॉय किया अपनी गाना गाना ही काफ़ी बेहतरीन था। एंड ये मतलब ऐसा है कि यार म्यूज़िक इज़ द ओनली थिंग, इट्स अ थेरेपी कि आपका मूड कैसा भी हो म्यूज़िक सुनो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो सीधे आपके जेब और बजट से जुड़ी है। नॉर्थ कैरोलिना के तमाम विधायक और बड़े नेता आज रैली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और विशेष एक दिवसीय सत्र के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस खास मीटिंग का केवल एक मुख्य एजेंडा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को कम करना और आम जनता को बड़ी राहत देना। सी लाइक पेट्रोल इज़ द थिंग और डीजल इज़ द थिंग जिसकी वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है और ये खर्चे भी बढ़ा देते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन तो हर किसी के लिए करना ज़रूरी है लेकिन जेब पर अगर ये भारी पड़ रहा हो तो दिक्कत हो सकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर बना नाइट्स।

तो राज्य में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर काम करना और आम जनता को बड़ी राहत देना, इस सत्र के दौरान राज्य की 41 सेंट प्रति गैलन वाली गैस टैक्स और अस्थायी रूप से निलंबित या कम करने का प्रस्ताव ऐतिहासिक वोटिंग पर होने की संभावना है। यदि ये कानून पास हो जाता है तो पूरे ट्रायंगल रीजन यानी रैडे, धरम और आरटीपी के निवासियों को हर बार गाड़ी में तेल भरवाते समय एक बहुत बड़ी बचत देखने को मिलेगी। लोकल बिजनेसमैन और रोज़ाना सफ़र करने वाले नौकरी पेशा लोग जो है, जिनका नौकरी ये पेशा है, इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इससे माल ढुलाई और रोज़मर्रा का सफ़र एंड खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। आप सुन रहे रेडियो नायरा।

0: आप सुन रहे रेडियो नारा पंडित वाला नाइट्स, एंजॉय किया आपने ये गाना जो था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। तो बात करते हैं धरम शहर के विकास और उससे जुड़ी जनता की चिंताओं की। धरम सिटी काउंसिल ने एक बहुत ही करीबी मुकाबले में, यानी 4 के मुकाबले में 3 वोटों से वेक फॉरेस्ट हाईवे पर एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत यहाँ करीब 200 नए घर बनाए जाएंगे। वैसे तो ये खबर सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन लोकल निवासी इस फैसले से थोड़े परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में पहले से ही पानी का प्रेशर बहुत कम है और ट्रैफिक की हालत ये है कि आधे मील की दूरी पर मौजूद किराना दुकान तक जाने में आधा आधा घंटा लग जाता है। ऐसे में 200 नए घर बनने के बाद जो दिक्कत आने वाली है वो आम जनता को, लोकल निवासियों को आने वाली है, ऐसा उनका कहना है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला गाना, बता रहे क्या रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोग।
1: पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, बुदड़ी का लाल, बुदड़ी का, बुदड़ी का लाल, बुदड़ी का, बुदड़ी का लाल, बुदड़ी का, बुदड़ी का लाल,
2: फोन ला जाके पब।

कुछ समझ में नहीं आया, फिर से सुन। घूम के वापस उधर ही आ गए।

नम दाती सितम में टैरेंटिनो की दसवीं फिल्म में खाती चिंगम में।

रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स है और अब रुक करते हैं शिक्षा जगत की एक ऐसी खबर की ओर जो बच्चों और शिक्षकों के भविष्य से जुड़ी है। वेक काउंटी स्कूल बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक नीतिगत फैसला लिया है। अब काउंटी के सभी स्कूल प्रिंसिपलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने स्कूल परिसरों यानी कैंपसों में शिक्षक संघ दैट इज टीचर यूनियन के प्रतिनिधियों को आने की अनुमति दे। इस नए नियम के तहत यूनियन के प्रतिनिधि स्कूलों में जाकर शिक्षकों से मिल सकेंगे, उनकी समस्याओं को सुन सकेंगे और उनके अधिकारों के लिए बात कर सकेंगे। जहां एक तरफ शिक्षण संगठन इस फैसले को वेलकम कर रहा है और इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इससे स्कूलों के रोजमर्रा के कामकाज और कड़े अनुशासन को बनाए रखने में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इंजॉय किया आपने गाना, ये गाना काफ़ी बेहतरीन था। एंड आज के बुलेटिन की आखिरी खबर हमारे हाई स्कूल छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ कैरोलिना शिक्षण विभाग ने राज्य के हाई स्कूल स्तरों पर गणित यानी मैथ की पढ़ाई की आवश्यकताओं और मानकों के बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। अधिकारियों का कहना है कि पुराना सिलेबस और नियम आज के आधुनिक दौर और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी पीछे छूट रहे थे। इस टाइम फॉर चेंज पहल के तहत मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम को अब अधिक व्यवहारिक और जॉब ओरिएंटेड बनाया जा रहा है ताकि छात्र कॉलेज और भविष्य के करियर के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। नए नियमों के तहत अब डेटा साइंस और कंप्यूटर आधारित गणित पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हालांकि स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि मिड सेशन में इस तरह से बड़े बदलावों को लागू करना और नए पैटर्न के हिसाब से बच्चों को ढालना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्मला राइट्स।

सुन रहे रेडियो नारापंडी वाला नाइट्स अब एक ऐसी खबर जो हम सभी ट्रायंगल वासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। टूरिज्म और इवेंट्स की दुनिया में मशहूर मैगजीन टुडे ने अपने सालाना अवार्ड्स की घोषणा की है और इसमें हमारे ग्रेटर रैली कन्वेंशन एंड विजिटर्स ब्यूरो विजिट रैली को पूरे नॉर्थ कैरोलिना का टॉप डिस्टेंशन मार्केटिंग संगठनों में विजेता चुना गया है। जूरी और वोट देने वाले लोगों का कहना है कि रैले शहर में नए नए शानदार होटल, मैशलिन मान्यता प्राप्त रेस्टोरेंट और वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर्स तो है ही, साथ ही यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है इस पूरे अमेरिका की मीटिंग्स जो होती है और घूमने के लिए अच्छी जगह बताई जा रही है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहते हैं रैली में क्या खास है, तो आप बताइएगा कि हमारा शहर अब पूरे अमेरिका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शहरों के यादी में टॉप पर आ चुका है। आप सुन रहे रेडियो नारापंडी वदन नाइट्स।

यदि कुछ खबरें जिनकी वजह से लाइक रैली के लिए बहुत अच्छी खबरें थी एंड सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मौसम तो इतना सुहाना हो चुका है कि इस प्यारे से मौसम में जो मज़ा आ रहा है वो अप टू द मार्क है। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट टाइप करना है रेडियो नायरा, देन यू विल गेट एन ऐप। उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। बस शर्त इतनी है कि आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। रेडियो नायरा मतलब छाया हुआ है हर तरफ, हर किसी की जुबा पर रेडियो नायरा का नाम है। तो आपने एंजॉय किया ये गाना, और भी बेहतरीन गाना आपको सुनाने जा रहा हूँ सिर्फ यानी सिर्फ रेडियो नायरा पर। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड एंजॉय कीजिएगा ये अगला गाना। रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

आप सुन रहे रेडियो नारा पंडित वना नाइट्स एंड लाइक इंस्पायरिंग और पॉजिटिव खबर धर्म से है जहां युवा पीढ़ी समाज में एक बड़ा बदलाव ला रही है। मानसिक स्वास्थ्य और जो भी लाइक मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब फिजिकल हेल्थ होना डेफिनेटली ज़रूरी है लेकिन मेंटल हेल्थ का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी हो गया है क्योंकि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी जिस तरह से ग्रो कर रही है, काश उस तरह से सारे देश ग्रो कर पाते, तो इन्हें ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली चीज़ें करनी चाहिए। उनके लिए युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी लाइक पुढ़ाकार ले रही है एंड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। धरम कन्वेंशन सेंटर में होने वाला फाइट नाइट इवेंट है जहाँ छात्र आपस में जो है वो इवेंट करेंगे, लोगों की मदद करेंगे एंड युवाओं का ये जोश समाज के प्रति उनका योगदान सचमुच बहुत काबिल तारीफ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नारा पक्का, देसी पक्का लोकल।

नाइट से इंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। एंड मैं यही कह रहा था कि अब वक्त हो चुका है अपने लवेबल लोगों के साथ इंजॉय करने का, डिनर करने का, घर लौटने का। यही वो समय है जो काफ़ी सुकून देने वाला रहता है। इट्स लाइक बहुत मतलब फैमिली मेम्बर एक साथ बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो नथिंग इज़ लाइक दैट। एंड वेल मौसम तो अच्छा ही है, ट्रैफिक थोड़ी मिल सकती है आपको, लेकिन आपको गति पर काबू करना है। अगर आप गति पर काबू करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो कल मिलूँगा आपको रेडियो नायरा पर, निर्वाण नाइट से शो पर। ये 7 से 10 का टाइम यार आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलते हैं कुछ नए गानों के साथ, कुछ नई अच्छी खबरों के साथ एंड कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड गुड नाइट, शब्बा खैर।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.
1: Healthy living means Indian tradition. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा only on Radio Nayra.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of The Shocky.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: अंश जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना,
1: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs.

0: मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब कोई चुगली क्यों नहीं कर रहा कहीं पे जाके, किसी की ट्रोलिंग क्यों नहीं हो रही है अब। हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर होस्ट अमृता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मदर कैटरीना कैफ, हु इज एक्चुअली मदरिंग राइट नाउ। जी हाँ, इनका लंदन में एक इवेंट था विच इज फॉर के ब्यूटी बाय कैटरीना, और उस इवेंट में क्या माशाल्लाह अदाए बिखेरती हुई नजर आई हमको हमारी कैटरीना, बिकॉज शी इज एक्चुअली अफगान जलेबी।
1: अफगान जलेबी मशहूर फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाई।
0: जी हाँ, उन्होंने प्रूव कर दिया है, और मैं चाहती हूँ कि अब वो ट्रोलर्स ना एक बार इनकी ये फोटोग्राफ देखे और खुद डिसाइड करें कि क्या उन्होंने सही किया या फिर नहीं। और अगर उनको समझ में आ जाए ना, तो वो अपने मुंह पे एक छोटा सा चाटा भी रसीद कर सकते हैं, क्योंकि अगली भाई 400 करोड़ की कंपनी की मालकिन है, एंड यू आर ट्रोलिंग हर लाइक शी इज नॉट इवन ए नाउन, शी इज एडजेक्टिव। जी हाँ, हम जब भी कुछ अच्छा वेयर करते हैं ना, हम जब भी कुछ अच्छा पहनते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि भाई हीरोइन लग रही है, हम ये कहते हैं कि भाई मस्त कैटरीना लग रही है। सो इफ यू आर दैट वन डाई हार्ट फैन ऑफ कैटरीना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, और आप मुझे बताइए जरूर इस बारे में ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA। चल दैट, चलिए सुनते हैं आने वाला

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ever been in love की आपको हर एक गाना अपने दिल से प्यार करना सिखा दे? Welcome back to Radio Nara and you're listening to your host Amrita. प्यार की बातें सुबह सुबह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि actually हमें अपने दिन की शुरुआत में प्यार से ही करना चाहिए और ये प्यार वाली बातें मुझसे बेहतर कौन कर सकता है? क्या मैं आपको बता रही थी if you're finding love या फिर आप प्यार के पीछे जाना चाहते हैं तो darling किसी एक ऐसे बंदे के पीछे जाना जो आपको आपसे प्यार करा दे. Your life should actually sound like
1: उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ, तूने आके बिन के
0: नहीं. हाँ, आइए सुनते हैं ये आने वाला गाना, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एंड ऑफकोर्स आप लोगों का भी, मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से. आइए सुनते हैं ये गाना और फिर स्टार्ट करेंगे रेडियो नायरा होरोस्कोप रैपिड फायर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, सो डोंट यू गो एनीवेयर, बिकॉज इफ यू गो यू गोना

रेडियो नायरा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता। बहुत सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन अब बारी है कि मैं आपको बताऊं कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा। सो ऑल ऑफ यू गाइस जस्ट स्टे रेडी, स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ एरीज से लेकर के पाइसेस तक कि आपका दिन कैसा जाएगा और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए अपने दिन को और भी ज्यादा बेटर और बेहतर बनाने। तो सबसे पहले हमारे पास है एरीज यानी मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए आज कोई भी नई शुरुआत करने का सबसे बेस्ट दिन है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर बढ़ सकते हैं। कोई भी कंपनी आप अगर आज लॉन्च करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है और अपनी एनर्जी को जरूर हाई रखिएगा। इसी के साथ आज आपका लकी कलर है लाल। अगली राशि है टॉरस, बताती हूँ आपको, लेकिन आफ्टर दिस

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

Horoscopes Rapid Fire में बहुत बहुत स्वागत है. एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. और अब बारी है कि मैं आपको बताऊं टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में. पेशेंस रखिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा. आपका सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि अगर आप किसी भी चीज पे धैर्य रखते हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है. कोई और नहीं खाता है आपकी मेहनत का फल. इसी के साथ आपके लिए आज का लकी कलर है ग्रीन. और अपनी राशि के बारे में जानने के लिए एशियन स्टार रेडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बारी है ऑल द जेमिनी.

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन? Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: Hum Sab Diwali is bringing alive the Festival of Lights and you don't want to miss it. Get ready for an unforgettable celebration of Indian culture featuring spectacular performances, delicious food, exciting shopping, family fun, and so much more. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.
3: The Morrisville Chamber of Commerce invites you to the Knowledgeable Network of Women, The Power of Voice, on Wednesday, October 22nd from 11:30 a.m. to 1 p.m. This inspiring interactive session will help you communicate with confidence, find your voice and show up with greater clarity and purpose. Register today at morrisvillechamber.org.
4: Media partner, you're coming Radio for Tanishq's Rally Trunk Show, na?
5: Kab?
4: Arey, I told you last week. It's on October 17th and 18th at Courtyard by Marriott Raleigh Cary, 1008 Parkside Main Street, Cary, North Carolina 27519, from 11 a.m. to 7:30 p.m. We had planned to get dinner also after.
5: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
4: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
6: रेडियो नायरा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता। बारी है जेमिनाइज की। कम्युनिकेशन स्किल्स चमक रहे हैं, नेटवर्किंग अपनी बढ़ाइए क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर होने वाला है येलो, यानी पीला। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा रखते हैं तो इतना जरूर बता दो, कोई भी नया प्रोजेक्ट मिलने में आपको बहुत आसानी होगी। अगली राशि है कर्क, जिसके बारे में आपको बताऊंगी लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग फ्रेंड।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

रेडियो नायरा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता। इसके पहले मैंने बताया आपको मिथुन राशि के बारे में और अब बारी है कर्क राशि। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आपका बिताने का बहुत अच्छा दिन है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली को मिस कर रहे थे, आज जाइए क्वालिटी टाइम बिताइए। दिल को सुकून मिलेगा और आपके दिमाग को ठंडक और थोड़ा सा रेस्ट भी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिश्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Tanishq, a Tata product. 99.9 FM, SD4, 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

रेडियो नायरा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता। बहुत सारी राशियों के बारे में कर चुके हैं बात, और अब बारी है लियोस की। जी हाँ, यानी सिंह राशि। कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पर है। आज कुछ बड़ा प्लान करने का दिन है, तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू कुछ प्लान कर रहे हैं तो जरूर करिए। सारे काम अच्छे तरीके से होंगे। तो और आज का आपका लकी कलर है गोल्डन। बताती हूँ आपको कन्या राशि के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग प्लान।

होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता। और अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गोस के बारे में। डिटेल ओरिएंटेड रहिए क्योंकि छोटी बातों में बड़ी खुशी छुपी हो सकती है, और हो सकती नहीं है, एक्चुअली होती है। छोटी छोटी बातें हमें खुश रहना सिखाती है, जैसे ये बारिश की बूंदें, जैसे थोड़ी सी सनलाइट जब आप बहुत ज्यादा कोल्ड फील कर रहे हो, या फिर ये सरसराती सी हवा। ऐसी छोटी छोटी चीजें मुझे तो खुश कर जाती है। और अब बारी है आपको इसमें खुशी ढूंढने की। आज का लकी कलर है आपका ब्राउन। इसी के साथ बताऊंगी आपको लीब्रास के बारे में यानी तुला राशि। लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक आप सुनिए ये आने वाला गाना

0: रेडियो नायरा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता।
1: बात करते हैं तुला राशि के बारे में। बैलेंस जरूरी है, लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है काम और फन दोनों में।
0: तो अगर आप काम कर रहे हैं और फन नहीं कर रहे हैं तो काम जरूर करिए, और अगर आप सिर्फ फन कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज काम भी करना शुरू करिए। आज का लकी कलर आपके लिए ब्लू। बताती हूँ आपको वृश्चिक राशि के बारे में आने वाले इस गाने के बाद।

0: रेडियो होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता।
1: बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के बारे में। इंट्यूशंस पर भरोसा रखिए, आज सही डिसीजंस जरूर लेंगे आप और अपनी इंट्यूशंस के बदौलत आप बहुत ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का लकी कलर है आपके लिए मरून। इसके बाद आपको बताऊंगी धनु राशि के बारे में यानी सैजिटेरियस।

रेडियो नायरा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज योर होस्ट अमृता। सैजिटेरियस यानी धनु राशि की बात कर लेते हैं। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, तो अगर आपको नया मौका मिले कुछ सीखने का तो जरूर सीखना। ये मत सोचना कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना माइंड को जरूर थोड़ा सा ओपन रखिए, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को ओपन नहीं रखते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज और सीख को अपने पास नहीं आने देते हैं। तो बी ओपन, डोंट बी रिजिड। और आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल। इसी के साथ आपको बताती हूँ कैप्रिकॉर्न्स के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्राइ कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तनिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी, नॉर्थ कैरोलिना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka desi, pakka local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन। वी आर वंस अगेन बैक फॉर द शो ऑन सैटरडे। पूरे दो घंटे का शो है और आज तो फुल पैक शो है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी इज ओवर टुडे, द लास्ट डे ऑफ श्राद्ध व्हिच इज पितृपक्ष, एंड ऑल्सो देयर इज टन्स ऑफ इवेंट्स गोइंग ऑन। आज का तो मुझे बनाने के लिए कम से कम आई हैव 12 पेजेस टू गो ओवर, और इतने सारे इवेंट्स मैं गिन रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 60 to 70 इवेंट्स वी आर गोइंग टॉक अबाउट। तो प्लीज़ अपने हाथ में पेन या पेपर रखिए, या तो यू नो कीप योर ईयर्स ओपन एंड नोट दीज थिंग्स डाउन, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आज तो। इवेंट्स का भंडार लगेगा यहाँ पे, और इतना कुछ है करने के लिए फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक टिल टुडे, स्टार्टिंग टुडे ऑल द वे टिल द एंड ऑफ नवंबर। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और क्या क्या कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे आप जा सकते हैं, कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वेदर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, मेक सम कप ऑफ टी कॉफी एंड रिलैक्स। एक गाना सुनिए और फिर मैं आता हूँ दोबारा, एंड देन विल स्टार्ट द शो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर टुडे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट प्री नवरात्रि शुरू हो चुकी है सब जगह पे, तो हम नवरात्रि, दशहरा, यू नो दिवाली, हालोवीन, एंड वी आर गोना कवर एवरीथिंग। सो वी आर कवरिंग राली, डूरम, केरी, मॉरिसविल, एपेक्स, हॉली स्प्रिंग्स, स्पीकवे, गार्नर, वेक फॉरेस्ट, सभी एरिया में क्या चल रहा है, राइट? बिकॉज आई फील लाइक यू नो द शो इज बीन हर्ड ऑल अक्रॉस द बोर्ड विया द रेडियो नायरा ऐप एज वेल। तो आप मुझे सुन सकते हैं on three frequencies. First of all, you can download the app on Radio Naira, 99.9 FM HD4, 101.9 FM, 1490 AM पर, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आप if you would like to call and share any events, feel free to 919-999-8595 पर। We have a full pack jam show, तो गाना सुनिए, then I'll be right after the break.

0: तो जी हाँ, आज की पार्टी मेरी तरफ से, और बहुत सारी पार्टीज हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय माता दी एंड श्री कृष्ण एंड आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। यू आर लिस्टिंग टू दिल से देसी विद मैन। वी आर ऑन रेडियो नायरा। यू कैन ट्यून इन ऑन 99.9 FM, HD4 101.9 FM या 1490 AM पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595 पर। Today's topic is all about events happening here for the next few months until the end of November. So, itna kuch chal raha hai, and there are so many flyers which are, you know, being spread across, which is hard to keep up with. I, in fact, have missed a lot of events because itna events hai yahan pe ke samajh nahi aa raha ke kaun se din pe kab kya ho raha hai. And I'll post this also on the Dil Se Desi Facebook page, just in case if it helps anybody, as a quick snapshot or a summary, okay, if you want to know what is happening where at any given point. तो आज की स्क्रिप्ट बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, टू फिगर आउट कि लाइक भाई कहाँ पे क्या है हो चल रहा है कि कुछ मिस ना हो जाए। एंड फर्स्ट डिस्क्लेमर कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है मुझसे, एंड ऑफकोर्स द इवेंट्स कैन ऑल्सो गेट कैंसल्ड फॉर वेरियस सेफरल रीजन, वेदर और एनीथिंग डिफरेंट। तो यू नो, दीज आर सम dates which are put on the flyers by the organizers. आज का शो पूरा एक मैप है देखा जाए तो, गरबे की रातें, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, अन्नकूट, गुरुपूरब, हॉलोवीन, क्योंकि हमारी यू नो बच्चे और जनरेशन वो दोनों ही चीज़ों को मनाते हैं, राइट? तो खूब हॉलोवीन को एंजॉय करते हैं ना, एवरीबॉडी एंजॉयज हॉलोवीन, राइट? एज अ फिर इसमें मंदिर्स हैं, नॉन प्रॉफिट्स है, एसोसिएशंस है, टाउन्स हैं, सभी कुछ एक कैलेंडर में है। तो कीप द पेन एंड पेपर रेडी so that you can keep up with all of these events and the dates. तो चलिए आज शुरू करते हैं। वैसे basically पहले कि October 10th, which is Saturday, तो today's snapshot, right? के आज सैटरडे है और ट्रायंगल में सबसे बड़ा इवेंट जो हो रहा है वो है हम सब दिवाली, राइट? सुबह से कोकाबू थिएटर में हम सब दिवाली चल रही है, जिसमें जिसमें इस साल विद्या वॉक्स, रोहित जयरामन और उनके लाइव बैंड ने हेडलाइन किया है, राइट? एंड देन देयर इज दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इवेंट अप हियर व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम ईयर्स, बहुत सालों से चल रहा है। And I think entry is free, but parking is $10, and depending upon, you know, where you're parking, there are some preferred parking, other charges for that. Make sure you take your ponchos, because barsaat pad rahi hai, but again, rain or wind, this event does not stop, because this is one of the big event. और फायरवर्क्स के के साथ साथ ये ख़त्म होता है इवेंट, राइट? और उसी रात को, आज ही रात को, दो जगह पे मेन बिग इवेंट्स गरबा के हो रहे हैं, HSNC में और ट्राइंगल गुजराती एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ में नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, विच इज़ अ लाइव ऑर्केस्ट्रा कमिंग फ्रॉम इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। एक बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से वहाँ नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है, जहाँ पे भगवान की पूजा होती है आगे के मंदिर में। वो तो कल से शुरू होगी, बट यू नो टुडे इज़ अ प्री नवरात्रि, राइट? जस्ट बिकॉज द वीकेंड इज हियर। एंड देन you know, the Navratri itself is also there. तो Navratri actually शुरू हो रही है कल से, but गरबे और ये सब चीज़ें आज से शुरू हो चुकी हैं, right? तो एक है नेट स्पोर्ट्स में, which is been organized, which is on Davis Drive पे है, जो RTP Entertainment की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, which is one of the biggest गरबा as well, जहाँ पे बहुत खुली जगह है खेलने के लिए, enjoy करने के लिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर द किड्स टू गो आउट, ऑल्सो एन्जॉय सम स्पोर्ट्स अरीना ऑन द अदर साइड। तो दैट इज़ ऑल्सो अ हाउसफुल पैक्ड इवेंट दैट इज़ ऑल्सो आउट देर। सो जो इस वीकेंड को वहाँ पे RTP एंटरटेनमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, देर इज़ ऑल्सो अनदर वीकेंड विच दे आर गोना बी ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑन 16th and 17th of October। तो दोबारा भी होगा, दे ओनली ऑर्गेनाइज दिस इवेंट ऑन वीकेंड्स, सो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिए। मंडे इज ऑल्सो अ पब्लिक हॉलीडे एंड किड्स आर एट होम, सो डू गो आउट एंड एन्जॉय दिस इवेंट्स। गार्नर में सुर तरंग का लाइव बैंड वाला गरबा हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। तो गार्नर में भी एक गरबा हो रहा है, वहाँ पे भी हमारा एक बहुत अच्छा बिग डायस्पोरा यू नो सेटल्ड है, एंड दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग लॉट्स ऑफ इवेंट्स देयर एज वेल। एंड देन बच्चों के लिए राइट लाइक बॉक्स यार्ड आरटीपी में ट्रिक एंड ट्रीट है, कैरी में गोल्ड फिश स्विम स्कूल की तरफ से ट्रंक और ट्रीट है, और डाउनटाउन गार्नर में ट्रिक और ईट है। मतलब कि एक ही दिन में दिवाली, गरबा, हॉलोवीन, ये पूरा इंडियन अमेरिकन कैलेंडर बन चुका है, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट देयर। तो मेन हाईलाइट फॉर टुडे इज, फॉर इनफैक्ट ओनली फॉर टुडे इज, हम सब दिवाली, विच इज अ प्रीटी बिग पॉपुलर इवेंट विच इज हैपनिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स नाउ। आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 25+ ईयर्स सिंस दे बीन डूइंग दिस, राइट? और स्पेशल आर्टिस्ट है, बहुत से लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कैरी टाउन काउंसिल एंड देयर इज ऑल्सो अदर टाउन्स हु आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस। एंड देन HSNC में नवरात्रि है, वंस अगेन स्टार्ट फ्रॉम 8 PM, विच इज़ बीन डन विद कोलेबोरेशन विद TGA। एंड देन RTP एंटरटेनमेंट के नवरात्रि के गरबे हैं, विच इज़ ऑन 3717 डेविस ड्राइव, विच इज़ नेट स्पोर्ट्स ऑन डेविस ड्राइव, और वो 2 वीकेंड्स पे हैं। तो October 9th and 10th, which is was yesterday and today, and October 16th and 17th. So tickets online, or you can buy them at the door, on their website. You can also visit their Facebook page to find the tickets available, because these get sold out pretty quick. Or Garner गरबा इज प्रेजेंटेड बाय सुर तरंग लाइव बैंड, तो वहाँ पे भी एक हो रहा है, और बहुत सारे ट्रिक एंड ट्रीट इवेंट्स हैं बच्चों के लिए फॉर सेलिब्रेटिंग द हॉलोवीन एज वेल। तो चलिए गाना सुनिए, देन आई बी राइट बैक। बहुत कुछ है आज, तो आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई इतने सारे इवेंट्स कहाँ से आ गए, राइट? तो दैट इज़ वाई आई थॉट टू जस्ट हैव अ शो ऑन दिस, बिकॉज एटलीस्ट एवरीबडी नोज कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, एंड इफ यू स्पेशली न्यू टू द एरिया एंड इफ यू ट्राइंग टू फिगर आउट के वॉट इज हैपनिंग वेयर, इट वुड बी हेल्पफुल एज वेल। तो गाना सुनिए, देन वी राइट आफ्टर द ब्रेक।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन, और हम एक बार फिर दोबारा आ चुके हैं। वी टॉकिंग अबाउट ऑल द इवेंट्स। तो चलिए पहले कैलेंडर पढ़ना हम देख लेते हैं कि भाई यू नो देयर आर सम की क्रिटिकल डेट्स। बहुत जगह पे यू नो थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है, तो पहले डेट्स क्लियर कर लेते हैं। राइट, नवरात्रि जो शुरू हो रही है एक्चुअल वो है 11th, विच इज़ टुमारो टू अक्टूबर 19th। दशहरा इज़ ऑन अक्टूबर 20th। ट्यूसडे को दिवाली है, तो एक्चुअली दिवाली शुरू होती है संडे से, विच इज़ द डे ऑफ धनतेरस, एंड एक्चुअल जो दिवाली है वो ट्यूसडे को है। नवंबर 8th इज़ अ स्पेशल डे गवर्नर स्टाइन इन अक्टूबर ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ और नवंबर 8th को नॉर्थ कैरोलिना में दिवाली डिक्लेयर की है। राइट, सो दिस इज़ ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ प्राइड। अ लॉट ऑफ यू नो आई एम प्रीटी श्योर इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बड़ी वर्क फोर्स होती है इन चीज़ों को अप्रूव कराने में। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आउट देयर फॉर द डायस्पोरा हियर टू declare Diwali in as a festival in North Carolina in October as a Hindu Heritage Month, right? बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारी community की पहचान के लिए, और moment to be of a pride for all of us. एक confusion भी clear कर देता हूँ, New Year HSNC के calendar के हिसाब से 9 November को है, लेकिन BAPS के गुजराती calendar

में नवंबर 10 को है। तो अन्नकूट, जिसे बहुत लोग न्यू ईयर कहते हैं, विच दे टॉक, विच का जो एक्चुअल टर्म है गुजराती लैंग्वेज में, बिकॉज आई नो गुजराती, इज कॉल्ड बेस्तुवरस, राइट, विच इज अ न्यू ईयर फॉर आवर हिंदू यू नो कम्युनिटी, राइट। तिथि का फर्क है, कोई गलती नहीं है। जिस मंदिर को आप जो फॉलो करते हैं, आप उसका कैलेंडर फॉलो कीजिए, उसे मानिए, देर इज नथिंग रॉन्ग। एंड अगेन, दीज थिंग्स आर ऑलवेज कन्फ्यूजिंग टू मी एज वेल, स्पेशली ये डिबेट शुरू होती करवा चौथ में के करवा चौथ कब है। तो यू विल ऑल्सो हियर इन द चैटर इन लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स एज हैपनिंग एज वेल। तो यू नो दीज आर सम कपल डेट्स, जस्ट कीप इन माइंड। एक गाना सुनिए, देन आई विल कम बैक। आई एम पर्पसली गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स टू गिव अ ब्रेक फॉर यू टू कीप अप विद दिस डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो एक गाने के बाद मैं दोबारा लौटता हूँ।

ओल्ड इज गोल्ड एज यू से। आज मैंने थोड़े गाने मिक्स किए हैं शो पे। आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इवेंट्स हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स। विल कवर अ लॉट ऑफ स्टफ। अब तो मैंने कवर ही करना को शुरू नहीं किया है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द शो, बट टिके रहिए, सुनते रहिए और जानते रहिए क्या क्या हो रहा है अपने एरिया में। एंड वी आर कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स टुडे। तो आज प्रीटी मच एक लिस्ट है 60 to 75 इवेंट्स की। अभी तक तो मैंने गिने नहीं है, मगर बहुत कुछ चल रहा है। तो चलिए, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बाय द वे, सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप और यू कैन ज्वाइन इन टू अस ऑन 99.9 FM HD4 101.9 FM या 1490 AM पर। या आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं 919-999-8595 पर। तो चलिए आज समझते हैं थोड़ा नवरात्रि का रोड मैप, राइट। के लॉट ऑफ पीपल कॉल एंड आस्क दें से भाई इतना कुछ चल रहा है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिंपल आंसर इसके भाई, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं आप वहाँ जाइए, जहाँ पे आपकी श्रद्धा है आप वहाँ जाइए। एंड सपोर्ट ऑल ऑफ दीज इवेंट्स बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड टू ऑर्गेनाइज। इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज एट सम पॉइंट और दी अदर। तो बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ों को करने के लिए, तो योर सपोर्ट इज नीडेड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स गोज फॉर द गुड कॉज। तो पहले सबसे शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले शुरू होता है नवरात्रि का एक असली मैप समझते हैं। गरबे के चार बड़े घर हैं यहाँ पे, राइट। देखा जाए तो वो है HSNC सबसे बड़ा, राइट। और उनका TGA का महोत्सव है वहाँ पे, विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद देम मॉरिसविल में, राइट इन द हार्ट ऑफ मॉरिसविल, विच इज़ फ्रॉम 9th to 19th। तो आज दो दिन एक्स्ट्रा है जस्ट बिकॉज देर इज़ अ वीकेंड, देर इज़ अ प्री नवरात्रि एंड द एक्चुअल नवरात्रि जो पूजा शुरू होगी जहाँ पे बिठाया जाएगा वो सवेरे आगे फ्रंट मंदिर में होगा और पीछे कल्चरल हॉल में भी भगवान को बिठाया जाएगा शाम के 4 बजे जहां पे गरबा होता है। तो रात 8 बजे से लाइव ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम इंडिया है। वेनसडे $10, वीकडे पे $10 है और $15 ऑन द वीकेंड्स। मेंबर्स के लिए है और यू नो देर आर डिफरेंट प्राइजिंग आउट देयर, सो आई डोंट वांट टू कोट एनी प्राइजिंग हियर। सो और वहाँ पे द बेस्ट चीज, इफ़ यू आर अगरवा लवर एंड इफ यू प्ले इट ऑल, आई विल रिमाइंड एवरीबडी टू बाय अ पास विच इज़ द मोस्ट बैंग फॉर द बक, विच इज़ $111। टेक्निकली आप ये मंदिर को डोनेट कर रहे हैं बिकॉज एवरी थिंग वट इज़ बिंग डन एट HSNC फॉर द न्यू कैंपस एंड फॉर द गुड कॉज। दो RTP एंटरटेनमेंट की नवरात्र के गरबे के इवेंट्स हैं, विच इज ऑन नेट स्पोर्ट्स, जैसे डेविस ड्राइव पे मैंने पहले बताया। दोबारा नोट कर लीजिए 9 और 10 अक्टूबर, विच इज यस्टरडे एंड टुडे, एंड देन फिर 16 और 17 अक्टूबर, विच इज नेक्स्ट फ्राइडे एंड सैटरडे, और फिर तीसरा है हॉली स्प्रिंग्स के गरबे और डांडिया नाइट, विच इज़ हैपनिंग ऑन सैटरडे October 18th पाइन स्प्रिंग्स प्रिपेरेटरी एकेडमी पे। द एड्रेस इज 1729 नॉर्थ मेन स्ट्रीट। नमस्ते नेशंस ने ऑर्गेनाइज किया है और मेजर मेयर माइक इज ऑल्सो गोइंग टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर देयर, राइट। हमारे हॉली स्प्रिंग्स के दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, ये आपके या ये खास आपके लिए है। और चौथा जो है October 23rd को, विच इज़ फ्राइडे, अगेन October 23rd विच इज़ फ्राइडे, विभा राली और जंकार एकेडमी का शरद पूनम गरबा है, राइट, नेट स्पोर्ट्स में। टिकट्स आर अबाउट $15 और $10, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, मगर यू नो ये भी हो रहा है। विभा नवरात्रि इज समथिंग स्पेशल बिकॉज आई नो द फाउंडर एंड कपल फोक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर, दे डू इट ऑल फॉर द गुड कॉज। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए इंडिया में वहाँ स्कूल्स बनती हैं ये डोनेशन से। सो दैट्स व्हाई आई से लाइक यू नो ये, इफ़ यू आर अ गरबा लवर प्लीज यू नो हेल्प सपोर्ट दिस ऑर्गेनाइज। अगर आप घर में भक्ति करने वाले नवरात्रि यू नो करते हैं तो एपेक्स में, और अगर आप यू नो मंदिर में जाते हैं तो एपेक्स में राधा कृष्ण टेम्पल में रोज शाम को 7 से 8 बजे तक, 11 से लेकर 28 तक। कैरी में साई टेम्पल में नवरात्रि
11 से है, सरस्वती पूजा 16 को है, और 20 तारीख को विजयदशमी है, और जो साईं बाबा की माँ समाधि के दिन है, राइट। एसवी टेंपल में भी बहुत इवेंट्स हैं नवरात्रि के लिए, रोज़ अभिषेकम चलेंगे, वहाँ पे हवन होगा, HSNC में भी रोज़ हवन होगा एवरी इवनिंग। तो आप अलग अलग घर देखना चाहते हो और अलग अलग रात में कुछ नवा देखना चाहते हो, तो यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर। वंस अगेन आई विल रिपीट के भाई HSNC में नवरात्रि है 9 से 19 तक। RTP एंटरटेनमेंट के 2 वीकेंड्स में इवेंट्स हैं। हॉली स्प्रिंग्स में गरबा इन डांडिया नाइट है, विच इज़ ऑन October 17, 7 PM ऑनवर्ड्स। ये स्पेशली यू नो हॉली स्प्रिंग्स के रेसिडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी, और फीकवे के लिए, बिकॉज उनके लिए यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ जाता है। मेयर माइक इज़ गोइंग टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, DJ मदन एंड जंकार एकेडमी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दैट, विभा राली एंड जंकार एकेडमी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ शरद पूर्णिमा नाइट, विच इज़ ऑन October 23 इन नेट स्पोर्ट्स। राधा कृष्ण टेम्पल में नवरात्रि जो मनाई जा रही है वो October 11 से 28 तक है, which is daily bhajans, puja, and all of those things are going to be happening at 8 p.m., 7 to 8 p.m. every day, which is on 23 Radhika Way. Shirdi Sai Baba Mandir mein bhi ho raha hai. Every day there is an event. October 11th ko Saraswati Puja hai. October 16th ko Vijay Dashmi hai, which is also the day of October 16th ko Saraswati Puja, and Vijay Dashmi is on October 20th, which is also a Mahasamadhi day. IAFV, which is the Fikwe Varina organization, something I can't remember the full name, par wahan pe bhi garba and dandiya night ho rahi hai, which is on September 19th. Ko wo dandiya night hai, and Diwali fest is on, October 19th, and Diwali fest is also on October 24th. तो आप आगे जाके हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, और जब हम दिवाली की ही बात करेंगे तो ऑल ऑफ दिस विल ऑल्सो कम अप। और शरद पूर्णिमा विल बी अराउंड 25th और 26th, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट ऑल्सो TGA सेलिब्रेट्स शरद पूर्णिमा गरबा इवेंट एज वेल। लास्ट ईयर ये October 10th को हुआ था, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, सो ऑल्सो कीप दैट इन माइंड। सो ये सभी कुछ नवरात्रि के लिए हो रहा है। पहले तो जब मैंने देखा था तो एक इवेंट होता था, एंड नाउ लुक एट दिस, ऑल द टाउन्स आर सेलिब्रेटिंग द इवेंट, एंड आई फील लाइक दैट इज व्हाई अक्टूबर इज बीन कॉल्ड एज अ हिंदू हेरिटेज मंथ। तो ब्रेक लेते हैं, गाने सुनिए, देन आई बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

तो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद बैन, वी आर बैक, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इवेंट्स हैपनिंग। हम बात कर रहे थे नवरात्रि की, गरबा की। तो आई डू वांट टू कॉल आउट यू नो अ सिंपल फाइव रूल्स व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस इवेंट्स, राइट, स्पेशली फॉर द गरबा, राइट। बहुत लोग होते हैं इन वेन्यू पे, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, राइट। रूल नंबर वन, बुक योर टिकट्स ऑनलाइन, डोर पे जाकर लाइन पे खड़े रहना, अपना टाइम मिस करना, एंड देन यू नो waiting in line to get in, and then there is no guarantee that if the event is full you will be said no or will be asked to wait, so that the capacity, the locations do not go over capacity. This is also because there are safety and security measures karna padta hai. So please book your tickets online if you're planning to go, taki last minute mein aapka mood upset na ho ki aap gaye aur aapko jaane nahi mila. Second one, very important, is also doing a carpool if you can, right, kyunki parking spots are limited, traffic is a lot on these areas, राइट। इमेजिन करिए कि अगर 2000 लोग वहां पे कार लेके आ जाए, पहली बात उतनी जगह भी नहीं है, एंड देन इफ यू गो इन कारपूलिंग इट हेल्प्स आउट अ लॉट, एंड देन यू आल्सो सेव आउट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आर मेकिंग पार्किंग फ्री इफ यू आर कारपूलिंग, सो यू देयर इज आल्सो अ वे फॉर यू टू सेव। रूल नंबर 3, राइट, टेक योर डांडिया स्टिक्स विथ यू बिकॉज हर जगह गरबे के साथ में डांडिया भी होता है, तो यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग देयर और यू विल बी, यू वोंट बी without the dandiya sticks when you want to play with that. Pani saath rakhiye please, steady, hydrated as much as possible kyunki bahut energy lagti hai. I don't even know how people play for 10 days non-stop. Ye energy kahan se aati hai, but it's also somewhat a good workout, but you know, pani ki bottles, you know, try to take it from home, because plastic, and you know, want to make sure that you are also looking at the environment factor on this as well. Aur panchwa rule sabse zaruri, right, volunteers ko thank you kijiye because you know ye bahut sari organizations hain jo kaam kar rahi hain din raat. This is a free volunteer work, they're spending their time, जैसे कि विवाह है, TGA है, एंड देर अदर प्लेंटी ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, राइट, जो लोग कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड देन यू नो कई बार कुछ भी ऊपर नीचे भी हो सकता है इस इवेंट में, तो डोंट पुट योर फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर ऑन देम बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट होता है तो पूरी जो टीम जो ऑर्गेनाइज करती है उसके बारे में दिन रात सोचती है। मेरे साथ में भी बहुत बार हो चुका है, व्हेन यू आर कंट्रोलिंग क्राउड फॉर अबाउट 2000 प्लस पीपल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए व्हेन यू आर गोइंग आउट देयर। Let's keep moving. So Durga Puja, right? Hubeck and our Vedanta Society. These are two big pujas also happening. So ab chalte hai Bengal ki taraf, jo uska ek special tradition hai. And they're also into a lot more. ये एक पूजा देखने वाली होती है, अगर आपने नहीं देखी है तो mark कीजिए Sunday tomorrow, October 11th. सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक बॉन्ड पार्क में, कवानी शेल्टर में, Hubeck के साथ यू नो एक बहुत ही बढ़िया पूजा है, सो दैट इज़ कॉल्ड महालया। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस, बट यू नो इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल रिचुअल जहाँ पे माँ काली की पूजा की जाती है, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ चैंटिंग, डांसिंग, भजन एंड ऑल ऑफ दैट। सो मिस मत कीजिए इसे। और फिर 16 से लेके 18 अक्टूबर को Hubeck की का दुर्गा पूजा कैरी में है, पैंथर क्रीक हाई स्कूल में, 6770 मक्रॉमिंग पार्कवे पे। पहले साल दुरम में था, इस साल कैरी में है, राइट। और फ्राइडे अक्टूबर 16 को एक कॉन्सर्ट भी किया जा रहा है, जो बांग्ला रॉक का सबसे बड़ा नाम है, राइट। आई डोंट नो द एग्जैक्ट आर्टिस्ट, बट दिस इज़ आल्सो कैक्टस का कॉन्सर्ट कहा जा रहा है इसे, अक्टूबर 16। टिकट्स भी जल्दी बिक रही हैं। दिस इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो गो ऑन देयर वेबसाइट, UBAC अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वेबसाइट के पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी है, यू कैन बिकम अ मेंबर और यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑल द इवेंट्स विच देयर ऑर्गेनाइजिंग। एक और दुर्गा पूजा है विच इज़ ऑल्सो समथिंग रियली बिग एंड नाइस टू गो एंड अटेंड, विच इज़ हैपनिंग ऑन संडे, अक्टूबर द 18th, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। वो है वेस्ट कैरी मिडल स्कूल में, वेदांता सोसाइटी की तरफ से, ऑफ नॉर्थ कलियाना की तरफ से। तो श्री दुर्गा की पूजा की जाएगी वहाँ पे,
The event, all of these events are free, lekin advance mein registration karna acha hai because they know what is the capacity. They are also expecting to usme bahut cheeze hoti hai, prasad and all of these things. They need to prepare and make sure that all of these things are there. To agar aapko aise events Facebook mein dekh rahe hain to going karke it doesn't help the organizers. If you are going and if there is any sign up link, please do sign up and send them your RSVP so they know what is happening where. That also helps out a lot. To chaliye एक ब्रेक लेते हैं, देन वी विल बी राइट बैक. विल कीप कंटिन्यूइंग कि और क्या चल रहा है टेंपल्स के लिए नवरात्रि में, सो यू कैन अंडरस्टैंड द फुल मैप एंड देन विल हॉप ऑन टू दिवाली आफ्टर दैट. गाने सुनिए, विल कीप कंटिन्यूइंग द इवेंट्स. बहुत कुछ है. Again, I'm trying to be as slow as possible, magar itne events hai that it will be very difficult for me to cover in 2 hours. So, gaane sunte rehte hain aur events ke baare mein charcha karte rehte hain, and then we'll be right after the break.

तो जी हाँ दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स। आज मैंने थोड़ी प्लेलिस्ट चेंज कर दी है, धमाकेदार गानों से थोड़े मिक्स किए हैं। होप यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड द वेदर आउटसाइड एज वेल। आज थोड़ी बारिश है मगर आज परफेक्ट कॉफ़ी का दिन है। तो चलिए वो थोड़ी मंदिर की डायरीज को खंगोलते हैं, देखते हैं क्या है। राइट, तो अगेन दीज आर लाइक रेगुलर इवेंट्स हैपनिंग एट द टेम्पल, बट डू वॉन्ट मेक श्योर दैट एवरीबडी इज अवेयर कि इन मंदिरों में भी बहुत कुछ चल रहा है इन महीनों में। राइट, तो पहले तो एस वी टेम्पल which is one of the best and the biggest in the area. Her Saturday, Sri Varu Abhishekam hota hai Friday ko, Amna Varu Tuesday ki raat ko 7:30 baje Sri Ramakrishna Sostram aur Hanuman Chalisa hoti hai. Kal Sunday ko 11th October subah 11:30 ko Sri Varu Homam hai aur I think Navratri mein roj hi wahan pe havan hote hain. Events ke liye you can also go check their website on the temple for the accurate dates and timings. जैसे कि मैंने पहले बताया, साई टेंपल में नवरात्रि 11th से है, सरस्वती पूजा 16th को है, विजयदशमी 20 को है और दिवाली 18 नवंबर को है, स्कंद शक्ति नवंबर 14th को है, और एपेक्स में बीवर क्रीक में जहाँ पे नवा मंदिर है कृष्ण धाम, वहाँ पे रोशिना जी की हवेली में पुष्टि मार्ग का घर है। वीकली सत्संग एकादशी सत्संग चलते हैं और बहुत ही कुछ वहाँ पर होते रहता है। ब्यूटिफुली एक वो हवेली को सजाते हैं और बड़े बढ़िया से यू नो त्यौहार मनाया जाता है। इस बार वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अन्नकूट और दिवाली का महोत्सव मनाया जाएगा जिसमें बहुत ही कुछ होने वाला है। राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट देयर एज वेल। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वहाँ पर भी शरद पूनम का एक इवेंट है विच इज़ हैपनिंग ऑन अक्टूबर 24th। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और उसकी रासलीला और वो वहाँ के ट्रेडिशंस और जो ब्रज में जिस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं उस तरीके से वहाँ पे श्रीनाथ जी के त्यौहार मनाए जाते हैं। चलते हैं बैप्स की तरफ। उनकी दिवाली नवंबर 8th को है अन्नकूट, और गुजराती न्यू ईयर दैट इज 10th ऑफ नवंबर, भाई बीज 11th नवंबर, और वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग उस अन्नकूट को विज़िट करते हैं। तो वो दिन वो भूलिएगा मत, दैट इज़ दी इवेंट यू वांट टू गो एंड अटेंड विच इज़ द बाप्स अन्नकूट विच इज़ रियली ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं। तो चलिए एंजॉय करिए एक आधे गाने, ये सब हम छोड़ते हैं फिर पहुँचेंगे दिवाली की तरफ। एक गाने हो जाए, आई एम गोइंग पर्पसली स्लोली सो दैट एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन द एरिया।

0: listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने सुना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड यू आर ऑन द शो दिल से देसी विद मैन. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इवेंट्स हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स. बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे. तो अब तक तो सिर्फ नवरात्रि एक घंटे में खत्म हुई, अब तो दिवाली, दशहरा, बहुत कुछ बाकी है. तो चलिए आते हैं वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप इवेंट, मॉरिसविल दिवाली, राइट. सैटरडे, मार्क कर लीजिए इस डेट को, सैटरडे अक्टूबर 17 शाम 5 से 8 बजे तक मॉरिसविल का टाउन का दिवाली फेस्टिवल है. इट्स फ्री इवेंट. और ध्यान रखिए, लोकेशन बदल गई है इस बार. अब सीडर फोर्क पार्क नहीं है, मॉरिसविल कम्युनिटी पार्क है, विच इज़ 1520 मॉरिसविल पार्कवे. और यू नो, देर विल बी दिया, मंडला, पेंटिंग, लाइव डीजे, फूड ट्रक्स, बहुत कुछ है, लोकल डांस, बहुत कुछ उस इवेंट में होता है. एक लोकल कैलेंडर भी है, अक्टूबर 24th को यू नो, एक लोकल यू नो, सभी ये टाउन के जितने भी इवेंट्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑल्सो ऑन मॉरिसविल वेबसाइट. सो यू नो, डू मेक श्योर दैट यू आर ऑन देयर. एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू यू नो इन्फॉर्म एवरीवन, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द फायरवर्क्स. जो लास्ट टाइम यहाँ पे इंसिडेंट हुआ क्रिकेट फील्ड का, प्लीज़ उसे ना दोबारा दोहराइएगा. इट पुट्स रियली अवर कम्युनिटी इन द हाईलाइट, सो प्लीज़ अवॉइड दोज काइंड ऑफ इंस्टेंसेज एज मच एज यू कैन, बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर द कम्युनिटी, राइट. जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ खराब होती है और वहाँ पे कम्युनिटी को हाईलाइट किया जाता है चंद लोगों की वजह से, हु प्रीटी मच ईदर आर नॉट इन्फॉर्म्ड और आर डूइंग सम थिंग्स विच हर्ट्स इनडायरेक्टली द होल एंटायर डायस्पोरा. तो उसका ध्यान रखिए प्लीज़. चलिए फिर आते हैं अक्टूबर 19th को, राइट. यह है दशहरा वीक. असली विजयदशमी जो है वो 20 अक्टूबर को है, बट दैट इज़ ट्यूसडे. लेकिन एक सेलिब्रेशन का यू नो सुपर सैटरडे जिसे कहते हैं वो है 24th अक्टूबर, दैट इज़ इन HSNC. बहुत बड़ा दशहरा का फेस्टिवल मनाया जाता है फ्रॉम हिंदी विकास मंडल ऑन HSNC के साथ मिल के. शाम के 4 बजे से मेला शुरू होता है, 5:30 बजे रामलीला है, 8:30 बजे रावण दहन होता है. दैट रावण इज़ रियली बिग, lots of fireworks, बहुत ही कुछ होता है उस चीज़ों में. एंड दैट इज़ बीन यू नो डायरेक्टेड बाई द रामलीला इज़ डायरेक्टेड बाई डॉक्टर सुधा ढिंगरा एंड गुरु कुबी बाबू. तो बहुत ही बढ़िया इवेंट है, राइट. किड्स लव इट अ लॉट. बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मनाया जाता है. और उसी सैटरडे को फीकवे वरीना में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फीकवे वरीना, यानी कि IAFV, जिसका पहले मुझे फुल फॉर्म नहीं आता, का दिवाली फेस्टिवल है फीकवे वरीना हाई स्कूल में, विच इज़ ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस. तो प्लीज़ यू नो ज्वाइन कीजिए. पिछले साल तकरीबन 1000 लोगों ने उस इवेंट को ज्वाइन किया था. तो फीकवे वरीना के दोस्त अगर आप सुन रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया आपका लोकल दिवाली इवेंट मनाया जा रहा है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 24 को बड़े इवेंट्स की शाम है, तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, बिकॉज रावण दहन भी है, दिवाली इवेंट्स भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट देयर. तो कीप एन आई आउट ऑन दोज थिंग्स. एक गाना सुनिए, देन विल बी राइट बैक. फिर हॉलोवीन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या हॉलोवीन में ट्रिक और ट्रीट्स इवेंट्स हो रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट. बट हैव अ लिसन टू द सॉन्ग एंड देन विल बी राइट बैक.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन ऑन रेडियो नायरा। थोड़े आज गाने अलग हैं, थोड़े स्लो इजी मूड वाले गाने हैं। सो लेट्स गो टूवर्ड्स हॉलोवीन, बिकॉज ये भी एक बच्चों के लिए बहुत ही अवेटेड प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इतना कुछ है हॉलोवीन में कि आई हैव टू डिवाइड दिस इन टू डिफरेंट सिटीज टाउन्स, राइट, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है, इतने सारे हैं, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट खेरी, मार्शविल एंड एपेक्स, राइट। हॉलोवीन में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो अक्टूबर 10th विच इज टुडे, राइट, गोल्ड फिश स्विम स्कूल में ट्रंक और ट्रीट है शाम को 6 से 8 बजे तक। एड्रेस इज 2980 किल्डर फार्म रोड कैरी में। फिर ट्रंक और ट्रीट विथ लाइट ब्रिज अकेडमी है एपेक्स में, विच इज़ ऑन अक्टूबर 16th नेक्स्ट वीक, एंड दैट इज़ फ्रॉम 6 to 8 PM। ऑल ऑफ दीज आर फ्री इवेंट्स। पम्पकिन फॉर टीला विच इज़ इन कैरी, एंड जॉम्बी प्लाजो शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट विथ कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट एट कैरी डाउन टाउन पार्क। वेकमेड कैरी वॉलेंटियर्स ट्रंक और ट्रीट में कर रहे हैं, और कोका बूथ में 6 to 8 PM को ये हो रहा है, विच इज़ लाइक यू नो अ बंच ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ऑन 23rd। फिर 24th को विजन मार्शल आर्ट ट्रंक एंड ट्रीट इवेंट हो रहा है कैरी में, विच इज़ फ्रॉम 5:30 to 7:30 PM, दैट इज़ 3460 1010 रोड पर, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं। फिर अक्टूबर 25th को आ जाइए, सेंट फ्रांसिस UMC ट्रंक एंड ट्रीट है, दैट इज़ अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM 2965 किल्डर फार्म रोड पर। फिर 29th को दैट इज़ थर्सडे पार्क वेस्ट विलेज फॉल फेस्टिवल हो रहा है मॉरिसविल में 4 से लेके 6 PM, इट्स अ फ्री इवेंट 3400 विलेज मार्केट प्लेस में। फिर बू बैश एट मॉरिसविल कम्युनिटी पार्क 6 to 8 PM, कैरी पुलिस डिपार्टमेंट भी ट्रंक और ट्रीट एट डाउनटाउन कैरी पार्क में कर रही है, और वॉल्टन वुड कैरी ट्रिक और ट्रीट परेड भी है 6 to 7 PM में। तो 29th अक्टूबर को बहुत सारे हैं, विच इज़ जस्ट द डे बिफोर और टू डेज बिफोर द इवेंट on Halloween. Growing Years Learning Center Trunk or Treat event hai Kerry mein 3:30 to 5:30, which is Fall Fest at the Shepherd's Church Kerry mein, जो 5:30 to 8:30 को भी हो रहा है। दो अलग अलग इवेंट है। सो अक्टूबर 30 ग्रोइंग ईयर्स लर्निंग सेंटर ट्रंक एंड ट्रीट है, और फॉल फेस्ट एट शेपर्ड चर्च भी है। वेस्टर्न वेक फार्मर्स मार्केट कॉस्ट्यूम पार्टी है इंडियन क्रिक ट्रेल हेड में, विच इज़ इन मॉरिसविल 8 AM to noon 101 टाउन हॉल ड्राइव में, राइट इन द हार्ट ऑफ मॉरिसविल में हो रहा है ये। एपेक्स में है स्केयरक्रो रो एट एपेक्स कम्युनिटी पार्क, रन्स हॉलोवीन वीक फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स। तो बहुत बहुत सारे इवेंट्स हैं, राइट। अगर आप देखें तो अक्टूबर 10 को गोल्ड फिश स्विम है, अक्टूबर 16 को ट्रंक और ट्रीट है, 23rd को पम्पकिन फॉर टीला है, फिर डाउनटाउन कैरी पार्क में एक इवेंट है, विजन मार्शल आर्ट्स अक्टूबर 24th को है, विच इज़ ऑल्सो अ ट्रंक एंड ट्रीट इवेंट, 25th अक्टूबर को सेंट फ्रांसिस UMC ट्रंक और ट्रीट है, 29th अक्टूबर स्पेशली को बहुत सारे ट्रंक और ट्रीट और यू नो हॉलोवीन इवेंट्स, एक तो पार्क वेस्ट विलेज में है, एक मॉरिसविल कम्युनिटी पार्क में, विच इज़ अ बू बैश, कैरी पुलिस डिपार्टमेंट इज़ डूइंग दैट ऑन द सेम डे, वॉल्टन कैरी ट्रंक और ट्रीट भी है। अक्टूबर 30th को ग्रोइंग ईयर्स लर्निंग सेंटर ट्रंक और ट्रीट है, 31st को वेस्टर्न वेक फार्म मार्केट प्लेस कॉस्ट्यूम पार्टी है, एंड एपेक्स में स्केयरक्रो कम्युनिटी पार्क वो भी एक कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर जस्ट ओनली एंड ओनली फॉर कैरी मॉरिसविल एंड एपेक्स। और अब चलते हैं हॉली स्प्रिंग्स फीक पे मरीना और गार्नर वेक फॉरेस्ट के हॉलोवीन इवेंट्स के ऊपर। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग लिस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग अप देयर। हॉली स्प्रिंग्स में अक्टूबर 24th को एनुअल ट्रंक एंड ट्रीट है एट द ब्लॉक ऑन द मेन स्ट्रीट, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हैव बीन हियर। 23rd को हॉली फेस्ट एट सक फार्म बास लेक लेक के ऊपर होता है, ये भी बहुत बड़ा इवेंट है, 150 ईयर्स से मनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट लाइक 50 फूड वेंडर्स होते हैं, फ्री राइड्स, इन्फ्लेटेबल्स,
50 प्लस लोकल आर्टिस्ट, हॉली स्प्रिंग्स हॉन्टेड ट्रेल भी होती है वहाँ पे फिक्वेवरीना में, राइट? आई नो देर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन फिक्वेवरीना आउट देयर फ्रॉम आवर कम्युनिटी एंड फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज आउट देयर. ट्रिक और ट्रीट डाउन टाउन में फ्राइडे 23rd, बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डाउन टाउन. दिस इज अ फ्री इवेंट, राइट? तो आई मीन सम ऑफ दिस कैन ऑल्सो चेंज बिकॉज द वेदर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स और बारिश और उसकी वजह से, मगर ये इवेंट है 2 से 5 बजे तक. रॉल्स बैप्टिस्ट चर्च फैमिली फॉल फेस्ट भी हो रहा है गार्नर में. ट्रीट और ईट दैट इज ऑन द मेन स्ट्रीट हैपनिंग 30th को कैपिटल चर्च ट्रंक एंड ट्रीट 6 PM to 8 PM. आवर हार्ट्स टू योर्स आउटरीच 6 PM to 8 PM. 31st को ट्रिक एंड ट्रीट ट्रेल एट वाइट डियर पार्क. और चिकफिले में भी वहाँ पे गार्डनर में हॉलोवीन मनाया जा रहा है. वेक फॉरेस्ट में हॉलोवीन बू बैश हो रहा है अक्टूबर 17th को फ्रॉम 10 AM to 1 PM. और फिर क्लेटन में भी है हॉन्टेड हार्वेस्ट दैट इज ऑन अक्टूबर 31st नून 8 PM विच इज़ ऑन हॉर्न स्क्वेयर. तो देर इज ऑल्सो अ टन ऑफ हॉलोवीन इवेंट्स हैपनिंग. चेक आउट दीज इवेंट्स. दीज वर मेनली जस्ट फॉर फिक्वेवरीना हॉली स्प्रिंग्स गार्नर वेक फॉरेस्ट एरिया. तो ये भी बहुत सारे हैं. एंड आई एंड विथ राली एंड ड्यूरम एरिया, वहाँ पे भी बहुत सारे बढ़िया हॉलोवीन इवेंट होते हैं. एंड आई हैव बीन टू मोस्ट ऑफ दीज, राइट? सो दीज आर रियली फन गोइंग वांट्स टू गो टू टेक योर किड्स आउट देयर. Trick and Treat at Box Yard, right? That is happening on October 10th. October 18th mein Hillsborough Street mein Trick or Treat hai. That is happening from 2 to 5 p.m. Jo Box Yard wala jo aaj hai, wo hai 3 se 6 baje tak. 23rd ko Scoopy Halloween party at Marbles Museum hai. This is also really big and nice event at 7 p.m. I have been here before. उसके बाद में ट्रिक एंड ट्रीट एट ब्रायर क्रीक कॉमन्स राली में हो रहा है ये. दैट इज़ ऑन अक्टूबर 25th फ्रॉम 11 AM to 1 PM एंड देर आर ऑल्सो गिविंग अवे फ्री पम्पकिंस. और बहुत सारी जगह पे यहाँ पे मैंने बताया वहाँ पे देर ऑल्सो गिविंग पम्पकिन पैच एंड गिविंग अवे फ्री पम्पकिंस एज वेल. अक्टूबर 29th लेक लेन फर्स्ट स्ट्रिंग ट्रंक और ट्रीट हो रहा है विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम 6 to 7 PM, 7:30 PM आई एम सॉरी. और फिर लायंस पार्क में भी हो रहा है ट्रंक और ट्रीट इवेंट फ्रॉम 4:30 to 7:30 PM. सो इफ़ यू बिलोंग टू दिस एरिया यू आर प्रीटी मच फेमिलियर ऑन ऑल ऑफ दीज. October 30th ko once again there's a lot of events happening. Biltmore Hills Falls mein Fall Festival ho raha hai 6 to 7 PM. Chesterbrook Academy North Rally mein 3 to 5 PM. Joybridge Kids Trunk and Treat ho raha hai Durham mein 5 to 7 PM. Durham Athletic Park First Responders Showcase for Trunk and Treat is happening from 5:30 to 8 PM. All of these are free events. Aur uske baad mein Top Green Trunk and Treat and Pumpkin Parlor, which is on October 31st, 3 to 6 p.m. Foodie Fest at Triangle Town Center. There are hundreds of food trucks out there. So, these events are just on

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स। तो चलिए, अभी ऑलमोस्ट अक्टूबर का महीना ख़त्म होने आ रहा है, तो अक्टूबर के महीने ख़त्म होते वक्त भी बहुत सारे चीज़ें हैं। वन इज़ दी करवा चौथ, राइट? सो थर्सडे अक्टूबर 29 करवा चौथ पूजा एट HSNC 3 to 6:30 PM, कथा विद मीना सूद, एंड देन अक्टूबर 25th एंड 26th इज शरद पूर्णिमा, सो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। So

बहुत ही कुछ उस टाइम पर भी होने जा रहा है। और फिर अक्टूबर महीना ख़त्म होता है एंड देन यू नो देर इज़ ऑल्सो हॉलोवीन एट दी एंड ऑफ द मंथ, जिसके बारे में मैंने बताया कि इतने ट्रंक और ट्रीट और ये सब इवेंट्स हो रहे हैं, राइट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस यू वांट टू जॉइन ऑन अक्टूबर 31 इज़ द हॉली फेस्ट इन हॉली स्प्रिंग्स, जहाँ पे सबसे बड़ा हॉलोवीन इवेंट मनाया जाता है। और फिर आते हैं नवंबर 1 पे। नवंबर 1 में है HSNC का दिवाली धमाका 2026। संडे नवंबर 1 1 PM ऑनवर्ड्स HSNC हॉल में, कल्चर हॉल में, ये बहुत ही बढ़िया इवेंट होता है, फॉलोड विद द फायरवर्क्स एट 8:30 PM। अंडर 5 आर फ्री, एजेस फ्रॉम 5 to 10 इज $10 एंड $15 फॉर दी एज 10 एंड अबाव। एंट्री इज फ्री फॉर कोरियोग्राफर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। टिकट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल नाउ। इसकी इवेंट की तो मैं स्पेशली कहूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग एंड इफ योर किड्स आर पार्टिसिपेटिंग, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव योर टिकट्स बुक इन एडवांस, क्योंकि उसमें होता ही है कि बच्चों का परफॉर्मेंस होता है और आप टिकट लेने बाहर खड़े होते हैं, तो यू समटाइम्स ऑल्सो एंड अप मिसिंग दिस डांस परफॉर्मेंस विच योर किड्स आर परफॉर्मिंग एट द दिवाली धमाका इवेंट। ऑल्सो एट द सेम टाइम उसी दिन में डे लाइट सेविंग एंड हो रही है, तो 2 PM को क्लॉक्स चेंज होगी। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके पास यू नो यू आर सेटल डाउन विद द टाइम एज वेल। फिर शुरू होता है दिवाली डिनर का यू नो एसोसिएशंस की महफिल। तो लाइक जितनी भी एसोसिएशन यहाँ पे हैं, अगर आप उनके साथ जुड़े हैं, तो उनमें भी बहुत सारे दिवाली डिनर्स होते हैं। तो यू नो लेट्स गो वन बाय वन। तो 21 को दिवाली, 21 नवंबर को TGA दिवाली डिनर है, विच हैपन्स एवरी ईयर। विभा राली का दिवाली फेस्टिवल है, विच इज़ ऑन नवंबर 2 कैरी सीनियर सेंटर में। टूटा ग्रैंड दिवाली इन हॉली स्प्रिंग्स, विच इज़ आई बिलीव ऑलरेडी हैपेंड आउट देयर। एंड देन ऑल्सो ट्राइंगल तेलंगाना एसोसिएशन दिवाली एंड डांडिया नाइट जो होता है वहाँ पर वो भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं भूल गया कि बदखुमा इवेंट्स आर ऑल्सो हैपनिंग अलॉट इन द एरिया विद टाटा टूटा एंड देन अदर कपल टेम्पल्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग द बदखुमा इवेंट एज वेल, जिसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। हम सब नेक्स्ट इवेंट है ट्राइंगल गॉट टैलेंट, विच इज़ ऑन डिसम्बर 5, विच इज़ ऑन एस्टन रिज मिडिल स्कूल में। टाउन ऑफ गार्नर दिवाली सेलिब्रेशन अपीयर्स ऑल्सो ऑन अक्टूबर ऑन द कैलेंडर। डेट्स आर नॉट कन्फर्म्ड येट, बट दैट इज़ ऑल्सो गार्नर इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग दिस एज वेल। तो बहुत ही सारे दिवाली डिनर्स भी हैं, बहुत सारे यू नो इवेंट्स भी हैं, बट लेट्स डाइव इन टू द डेट्स ऑफ दिवाली, राइट। प्रीटी मच इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दिस एसोसिएशन, सभी के दिवाली डिनर्स होते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू नेल डाउन वेन एंड वेयर दे आर, बट दे आर मोस्टली इफ यू आर एसोसिएटेड विद दैम, उनके दिवाली डिनर्स भी होते हैं उस टाइम पर ही, एंड मोस्टली सम ऑफ दिम आर ऑल्सो गाला डिनर्स, दे आर कम्बाइंड डिनर्स वेल। दिवाली की बात करते हैं तो नवंबर 6 को दिवाली है, विच इज़ ऑन। सो एक काम करते हैं, एक्चुअली लेट्स टेक अ ब्रेक बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव पुल्ड आउट देयर, विच इज़ करवा चौथ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट एक ब्रेक के बाद आते हैं, देन विल टॉक अबाउट दिवाली।

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन। वी आर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स इन। चलिए दिवाली की बात करते हैं। तो दिवाली इज ऑलवेज कन्फ्यूजिंग व्हेन इट कम्स टू द डेट्स, बिकॉज यू नो कई लोग किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, कहीं किस को फॉलो करते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट एचएसएनसी फर्स्ट। तो धनतेरस उन एचएसएनसी के हिसाब से नवंबर 6 को है, नवंबर 7 को काली चौदस है, उस दिन वहाँ पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पार्ट भी है। नवंबर 8 को दिवाली है, विच इज़ लक्ष्मी पूजन फ्रॉम 5 to 8 PM, दीप दर्शन एट 7 PM, एंड देन सिल्वर कॉइन्स आर अवेलेबल एट द टेम्पल एज वेल। मंडे नवंबर 9 को हिंदू न्यू ईयर है, एंड देन नवंबर 10 को भाई दूज है। ऑल्सो यू नो सम टेम्पल्स आर फॉलोइंग डिफरेंट कैलेंडर डेट्स, तो ऑल्सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। फॉर एन एग्जाम्पल, जो बैप्स में है वो दिवाली 8 को है, अन्नकूट नवंबर 8 को अन्नकूट है, एंड देन न्यू ईयर इज ऑन भाई दूज इज़ ऑन नवंबर 11th, न्यू ईयर इज़ ऑन नवंबर 10th, विच इज़ द अन्नकूट, एंड देन दिवाली इज़ ऑन नवंबर 8। तो डिफरेंट दिन, डिफरेंट त्यौहार, हर मंदिर में कुछ डिफरेंट कैलेंडर्स हैं। सेम आई टॉक टू यू अबाउट द हवेली, द कृष्ण धाम वन, राइट। वहाँ पर नवंबर 5th को थर्सडे को अग्यारस है, विच इज़ द व्रज वर्ष। नवंबर 6th को धनतेरस है, विच इज़ ऑन फ्राइडे। नवंबर 7th, विच इज़ सैटरडे को रूप चतुर्दशी है। नवंबर 8th को दीपावली है, विच इज़ ऑन संडे। तो एक अच्छी चीज़ है कि दिवाली सबसे ही दिन मना रहे हैं। नवंबर 9th को, विच दे कॉल इट अ पर्तर दिवस, विच इज़ अ ब्लैंक डे इन बिटवीन। नवंबर 10th को ट्यूसडे को न्यू ईयर मनाया जाएगा, जहाँ पे गोवर्धन पूजा होगी, अन्नकूट पूजा होगी वहाँ पे। यू मस्ट विजिट दिस इवेंट देयर। इन नवंबर 11th को हवेली में भाई दूज मनाया जा रहा है। तो यू नो जस्ट कीप एन आई आउट ऑन दीज डेट्स, बिकॉज दे चेंज एज पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डेट्स। एंड देन आप बात करते हैं अन्नकूट की, राइट। इसका मतलब क्या है, यू नो ऑफकोर्स वहाँ पे सैकड़ों वेजिटेरियन डिशेज भगवान को अर्पित की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है। बाप्स मॉरिसविल में नवंबर 10th को है, एपेक्स कृष्ण धाम में नवंबर 14th को भी है, नो नवंबर 10th को है, एंड देन 14th नवंबर को एचएसएनसी में बहुत ही बड़ा अन्नकूट का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। तो आते हैं इस इवेंट के ऊपर कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है ऑन 14th ऑफ नवंबर, मार्क दिस डेट। देयर बाय ऑलरेडी एन इनवाइट्स बीन सेंट आउट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ एचएसएनसी। तो इस साल का अन्नकूट विच विल बी वेरी डिफरेंट। एक तो है कि न्यू टेंपल के लिए महायज्ञ किया जा रहा है, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट यज्ञ विच विल बी डन इन आवर आरटीपी एरिया फॉर द न्यू टेंपल डेवलपमेंट, जिसमें द एंटायर कम्युनिटी विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द टेंपल्स, everybody, all the dignitaries are invited. The team is working very hard toward this. तो ये एक मंदिर के ही पार्किंग लॉट में एक महायज्ञ किया जाएगा, जहाँ पर आपको एक्चुअली जिस साइट पर मंदिर बन रहा है वहाँ पे लेके जाया जाएगा। एंड देर विल बी अ बैनर रिवीलिंग, तो आपको पहली बार पता लगेगा कि इस जगह पे ये चीज़ बनने जा रही है। फॉर एन एग्जांपल यज्ञशाला है, फॉर एन एग्जांपल कम्युनिटी हाइव है, कैसे वो एरिया पूरा ट्रांसफॉर्म होगा, उसको वॉक थ्रू किया जाएगा। आपको एक ड्रोन व्यू की तरीके से एक वीडियो प्रेजेंट की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो दिस इवेंट इज अ मिक्सचर, राइट। तो पहले 3 बजे से शुरू होगा साइट वॉक थ्रू, वेयर द एंटायर कम्युनिटी विल गैदर, वी विल डू अ वॉक अराउंड टू शो यू व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद में यज्ञ शुरू होगा 4 से लेकर 5:30 बजे तक, फिर 5:30 से 6:30 बजे तक गोवर्धन पूजा, यू नो अन्नकूट की पूजा, और वो सब कुछ कल्चरल हॉल में हो रहा है, बिकॉज दिस इज गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट हैपनिंग ऑन नवंबर 14th। सो प्लीज मार्क दिस डेट। यू कैन ऑल्सो
sit in the yagna. So the goal is to invite the entire community and be part of this auspicious moment, kyunki aapko bhi ek mauka hai apna yogdan dene ka is cheez ke andar. So please ise join kijiye, and then at followed by all of those activities at the evening, there is a grand Annakut Prasad jo puri community ko kiya jata hai, where there's like almost thousands of families who join this event. So is date ko bhulna mat. November 14th is one of the biggest Annakut Utsav happening in HSNC. Also the BAPS one is something that you don't want to miss, and also the Haveli one you don't want to miss, and there are other several temples are also doing this, but the one which HSNC is doing is a little bit different this year, which is a combination of Mahayagna for the new HSNC campus along with the Annakut Utsav, which is happening on that same date. Almost there are about 100 plus families who have already signed up. There is a lots of preparation going behind the covers for this event. I am particularly involved in this. So please just join kijiye. This is also something that you can get connected towards the new temple to understand kya ban raha hai, because aaj tak to sab yahi soch rahe hain, samajh rahe hain ke kab ban raha hai, kaise ban raha hai, kya ho raha hai. But these things take a lots and lots of planning. This may it is going to be a state of art temple. The facility is going to be a huge campus. This is why we don't call this as a temple. It's going to be a huge campus jahan pe bahut hi sari facilities hongi, seniors ke liye, bachchon ke liye, dining hall, cultural event hall, us jagah ka pura naksha change ho jayega. And then just a small teaser, somewhere around in the spring, I don't want to call out any dates since these are not finalized, but spring next year there's a groundbreaking ceremony hogi. To ab ye jo hai, this is now going into a development phase. So itne times se agar jo aap sun rahe the ki new campus ban raha hai aur ye sab kuch ho raha hai, but now this is all coming into life, and that is all going to be happening with the Lakshmi Havan, which is also the entire community is requested to come and participate. So I especially want to emphasize this event on 14th November. Is date ko yaad rakhiye, or you can also go on temple site. There's also, you can go on Facebook and find the event and sign this up, because it's going to be an entire community joining for the Mahayagna. So chaliye ek do gaane suniye, then I'll be right back after the break.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन ऑन रेडियो नायरा, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-999-8595. देर आर वेरियस फ्रीक्वेंसी, 99.9 FM HD4, 101.9 FM, 1419 AM. या तो आप रेडियो नायरा की ऐप भी डाउनलोड करके रेडियो नायरा को सुन सकते हैं. तो आज बहुत सारे इवेंट्स मैंने कॉल आउट किए. अब मैं बैठ के गिन रहा था, इट वॉज अबाउट 74 इवेंट्स विच आई हैव कॉल्ड आउट एंड देर येट टू गो. तो चलिए अब हम पहुंच गए नवंबर की तरफ. तो एक डेट हम सभी को कैलेंडर में मार्क करनी चाहिए, वो है ट्यूसडे नवंबर द 3rd. दैट इज़ द इलेक्शन डे. हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यू नो आर एलिजिबल टू वोट. प्लीज़ एवरी वोट काउंट्स. अर्ली वोटिंग्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं. और आपका स्केड्यूल और क्या है आपकी यू नो टाउन के हिसाब से प्लीज गो चेक इट आउट. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको वोट कीजिए या उसको वोट कीजिए. आई एम ट्राइंग टू स्टे हिज मैसेज अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, बट इतना जरूर है कि आप किसी को वोट जरूर कीजिए सो दैट यू हैव अ वॉइस ऑन द टेबल व्हाट एवर यू विश टू डू. एंड यू कैन ऑल्सो रिसर्च, यू कैन ऑल्सो गो फाइंड योर बैलेट बिफोर यू गो टू वोट टू फिगर आउट हु शुड यू वोट. और चलिए फिर आते हैं लेट नवंबर की तरफ. तो अब शुरू होता है कि लाइक यू नो प्रबोधिनी एकादशी, गुरुपुरब, थैंक्स गिविंग, देयर्स अ लॉट्स ऑफ थिंग्स पैक्ड अप ऑल्सो इन नवंबर. तो प्रदोषिनी एकादशी विच इज गोन बी फ्रॉम एज पर बैप्स कैलेंडर, शनि त्रयोदशी एज पर साई कैलेंडर ऑन नवंबर 21st. ट्यूसडे नवंबर 24th को कार्तिक पूर्णिमा है विच इज़ ऑल्सो देव दिवाली एज पर बैप्स. गुरु नानक और गुरुपूरब जयंती भी उस दिन होती है. गुरुपूरब मनाई जाती है अगेन दैट इज़ ऑल ऑन नवंबर 24th और इधर नवंबर 25th, डिपेंड्स अपॉन यू नो फोक्स फॉलो डिफरेंट कैलेंडर्स. जहाँ पे गुरुद्वारों में लंगर कीर्तन की सेवा भी होती है, सो यू कैन ऑल्सो चेक दैम आउट. नवंबर 26th को थैंक्स गिविंग वीकेंड है. एंड देन अगेन इन द लेट डिसम्बर इट्स यू नो Triangle Got Talent from Hum Sab happening as well on Ashton Reach Middle School. तो ये भी चीज नवंबर में joined है, इसको भूलिएगा मत. एक छोटी सी चीज, राइट, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवेंट्स डोंट हैपन विदाउट वॉलंटियर्स एंड अ लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन विच गोज बियॉन्ड इट, राइट. जैसे विवाह है, देयर इज अ लॉट ऑफ एसोसिएशन, TGA, IAFV जो है, टूटा टाटा, यू नो देयर इज सो मेनी आउट देयर. आई डोंट वांट टू कॉल ईच एंड एवरी वन ऑफ आउट देयर. देयर इज टेम्पल्स डूइंग दीज थिंग्स टू डू कीप द कल्चर अलाइव एंड यू नो बी एबल टू एंजॉय दीज फेस्टिवल्स. तो यू नो दिस मंथ, दिस टू मंथ्स आर फॉर फेस्टिवल सीजन्स जहाँ पे बहुत सारा खाना बनता है, प्रसाद बनता है. देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इफ यू वॉन्ट टू वॉलंटियर. इफ यू कैन गो आउट, यू नो बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट्स. Be humble and polite because it's not easy to pull these big fit events out, especially like the one I was talking about on November 14th, जहाँ पे आप इमेजिन कीजिए 200-250 फैमिली बैठ के अगर वहाँ पे हवन करेगी तो उसको ऑर्गेनाइज करना कितना डिफिकल्ट है. बट डू जॉइन दीज एंड सपोर्ट दीज कॉजेज एंड इवेंट्स बिकॉज दीज आर सम बिग इवेंट्स हैपनिंग हेयर. दे ओनली कम वंस इन अ ईयर, यू नो. सो इसकी इसका पार्ट बनिए, इसको एंजॉय करिए. एंड एक गाना सुनिए, देन विल बी coming on for the closing.

तो जी हाँ दोस्तों, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड ऑफ द शो वंस अगेन। तो हमने दिवाली, यू नो, नवरात्रि, दशहरा, अन्नकूट, हॉलोवीन, गुरुपूर्व, कितनी इवेंट्स की बात की है। ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। वंस अगेन, यू नो, द गोल वॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर ऑल ऑफ दीज इवेंट्स बिकॉज फेस्टिवल का मौसम है एंड देन यू नो एवरीबडी इज़ गोना बी एन्जॉइंग दीज इवेंट्स आउट। प्लीज़ बी सेफ आउट देयर। अगर किसी कोई वॉलंटियर से कुछ गलती हो, कुछ हो, तो टेक इट ईजी। And you know these are all events happening at the good phase, and you know to bring the community together. So I hope you enjoyed. मैंने देखा almost we have gone through 74 plus events, and again इसमें बहुत से miss हुए होंगे. I'm pretty sure some of the dates might be somewhat not accurate, but I did my best to you know investigate all of these and give out the best information out there. तो आप enjoy कीजिए show को. मिलेंगे फिर again next week. Today I'll be there at RTP Entertainment Garba. We'll be enjoying some of the meeting some of my friends out there, and also be there at HSNC at some point. तो आई होप यू एन्जॉयड दिस एंड अपना कैलेंडर मार्क करके रखिए क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हैं. आई प्रीटी मच फॉरगॉट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट यस्टरडे एंड आई कुडंट अटेंड देयर. सो विल सी यू नेक्स्ट वीक. एन्जॉय द वेदर, बी सेफ आउट देयर, त्यौहारों का मजा लीजिए. एंड इफ आई हैव मिस्ड एनी ऑफ देम, प्लीज फील फ्री टू सेंड मी द मैसेज एंड आई विल बी डेफिनेटली अनाउंसिंग देम नेक्स्ट वीक एज वी कम सैटरडे लाइव एवरी टाइम. एन्जॉय द शो, एन्जॉय द सॉन्ग्स, एंड आई होप यू स्टे वेल, safe, and enjoy all of the weekend. And also some of the, you guys also have holidays on Monday. Thank you. This was Van on Dil Se Desi Show with Radio Naira.

0: कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन।
2: बाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, थोड़ा आगे बाएं के, दाएं के सीधा जाके दाएं के, दाएं के बाएं के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, Pakka Desi, Pakka Local.

मुझे लगता है जहाँ भी कुछ अच्छी चीज़ हो रही होती है ना, वहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रगल होता है, मतलब स्ट्रगल पे स्ट्रगल होते रहता है. वेल, दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो, रामायण प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा's कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड हैज रिपोर्टेडली कम अंडर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्कैनर विद सर्चेस कंडक्टेड एट इट्स मुंबई ऑफिस ऑन वेंसडे अक्टूबर 7. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय CNBC टीवी 18, द सर्चेस आर रिपोर्टेडली लिंक टू फॉरन रेमिटेंसेज. हाउएवर, डिटेल्स अबाउट द ट्रांजेक्शन बींग एग्जामिन एंड द बॉर्डर एंड द ब्रॉडर स्कोप ऑफ द इंक्वायरी हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड येट. फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैटर is awaited. The reported searches also appear to impact Prime Focus stock performance, with the company's shares falling by around 8% during morning trading. On October 7, Namit Malhotra is yet to issue a statement on the reported development. I hope it gets resolved soon, man. This is huge. Well, stay tuned for more only on Naira.

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

इतना पोटेंशियल है तुझमें, क्या हो गया? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेल फोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: टू ऑल ऑफ यू, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाता नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आज की आपकी ये इवनिंग तो काफी बढ़िया चल रही है क्योंकि मौसम जो है वो काफी अच्छा हो रखा है। एंड इस प्यार भरे मौसम में अगर रेडियो नायरा पर निर्वाना नाइट्स शो आप सुन रहे हो और आपके साथ एक कड़क अदरक के प्याले वाली चाय है तो क्या ही कहने है ना। मतलब मैं यही कह रहा था कि यार अभी जो ठंडक है मौसम में धीरे धीरे आ रही है, मौसम काफ़ी बेहतरीन होते नज़र आ रहा है और विंटर की महक हर दिशाओं में गूंज रही है ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्यार भरे मौसम में एक अच्छा गाना सुनना तो बनता है, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।
1: पुतनी का भागने न पाए।

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन, मायने किसी बजे के दाई पुरु दाई ने किसी बजे के दाई, मायने किसी बजे के दाई पुरु दाई ने किसी बजे के दाई, फिर थोड़ा आगे मायने के दाई ने किसी बजे के दाई ने किसी दाई।
0: हैं? कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन, मायने किसी बजे के दाई पुरु दाई ने किसी बजे के दाई, फिर थोड़ा आगे मायने के दाई ने किसी बजे के दाई ने किसी दाई ने के मायने के दाई।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरबना नाइट्स, एंड आज हम बातें करेंगे हमारे आज जैसे सेगमेंट होता है कि हम स्टार्ट करते हैं हमारे शो की एक लोकल न्यूज एंड क्या चल रहा है हमारे एरिया में उसके बारे में। तो आज ही पहली लोकल है, पहली बड़ी खबर विकास को लेकर है। विकास मतलब डेवलपमेंट को लेकर है कि हमारे रिसर्च ट्रायंगल पार्क आरटीपी में अब नए युग की शुरुआत हो रही है। पिछले 65 सालों में पूरे 7000 एकड़ के इलाके में सिर्फ ऑफिस और रिसर्च का काम होता था, लेकिन अब नए आरटीपी 3.0 प्लान के तहत यहाँ रहने के लिए नए अपार्टमेंट्स, नए रेस्टोरेंट्स और दुकानें बनाई जा रही है ताकि लोग यहाँ काम करने के साथ साथ रह भी सके। ये काफी अच्छी बात है। और जो मजा आने वाला है काम के साथ, जो फन करने का मजा आने वाला है, ये अब टू द मार्क रहने वाला है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

नम धाती से तम में टैरेंटिनो की दसवीं फिल्म में खाती चिंगम में।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

किया आपने एक गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन, एंड इस ठंडी हवाओं के साथ ये गाना मतलब क्या गजब का कॉम्बिनेशन था। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे बराग। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, एंड इस वीकेंड सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश क्षेत्र के लिए फायदेमंद तो होगी, लेकिन इसके चलते रॉकी और डरम में होने वाली कई बाहरी आयोजन और वीकेंड की योजनाएं प्रभावित हो सकती है। कहने का मतलब सिंपल सिंपल है कि इस वीकेंड को आप कुछ प्लान कर रहे हो तो मे बी आपको प्लान को डिले करना होगा, क्योंकि बारिश की संभावना है। अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए, वेदर देखिए, ऐसा ना हो कि प्लान अच्छे के लिए करना है एंड बारिश की वजह से प्लान जो है वो सफल नहीं हो पाया है। बने रहिएगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आर यू बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए,
1: पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, पुतनी का भागने न पाए, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल।

0: गुदड़ी का भागने न पाए।
1: ये तो बता।
0: गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल।
1: ये तो बताओ।
0: गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल।
1: ये तो बताओ, जाना किधर है?
2: इधर है।

0: भूत समझ में नहीं आया। फिर से सुन।
1: दाएं के सिरा जाके दाएं पुरु, दाएं के सिरा जाके दाएं पुरु, थोड़ा आगे दाएं के सिरा जाके दाएं के दाएं के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

गाना गाना था वो आ गई मेरे काफी बेहतरीन। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन निर्मला नाइट्स, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। तो ये बड़ी खबर है एक मौसम को लेकर और आ रही है कि मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करी है कि हरिकेन्स इसाइस अब एक खतरनाक कैटेगरी 3 तूफान में बदल चुका है। इसके असर में इस वीकेंड पूरे ट्रायंगल क्षेत्र में भारी बहुत बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आरडीयू एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हो रही है, इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का हर कुछ चेक कर लीजिए एंड मौसम चेक कर लीजिए, अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज, क्योंकि मौसम की संभावना बिगड़ने की संभावना है ये बताया जा रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स।

एंजॉय किया आपने गाना जो था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवना नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। अगली खबर है कि गैस टैक्स पर राहत की पक्की मुहर। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए आज की एक राहत भरी खबर है। गवर्नर जॉस्टीन ने शुक्रवार सुबह उस बिल पर साइन कर दिए है जिसके तहत राज्य में 41 सेंट प्रति गैलन का गैस टैक्स पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। यह टैक्स ब्रेक 30 नवंबर तक लागू रहेगा जिससे आज से ही पेट्रोल पंपों पर कीमतें कम होना शुरू हो गया है। मतलब यार, ट्रांसपोर्टेशन इज द बेसिक नीड। आप कहां पे भी जाओ, कौन से भी देश में रहो, ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको पैसा देना ही है, लेकिन अगर बजट फ्रेंडली हो ईंधन तो क्या ही कहने। आप सुन रहे रेडियो नायरा पंडिरवना।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.